हम अपनी डेटिंग लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या क्या करते हैं? वी मेक श्योर दैट वी टेक अ डे ऑफ इन द मिडल ऑफ द वीक. हाउ एडवेंचरस. वी मेक श्योर कि हम नॉटी नहीं होते इन द बेडरूम. वी गेट नॉटी इन द किचन. सुपर एडवेंचरस. लेकिन फॉर सम पीपल एडवेंचर डज नॉट स्टॉप देयर. सो आई हैव अ वेरी क्लोज फ्रेंड जिसने डिसाइड किया है कि अपनी डेटिंग लाइफ को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो और उसका पार्टनर वेडिंग्स क्रैश करेंगे. अर्थात किसी स्ट्रेंज सज्जन के घर जाकर, घर नहीं एक्चुअली शादी में जाकर, फ्री का खाना, फ्री की दारू पियेंगे और वापस आ जाएंगे. माय क्वेश्चन टू हर वाज, पकड़े गए तो क्या होगा? दे वर लाइक, क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा शादी से बाहर फेंक देंगे. तब तक हमने कम से कम 4 चिकन मंचूरियन और 2 गोभी 65 तो खा लिए होंगे. एंड आई वाज लाइक, That's pretty interesting, honestly. और अगर आपकी भी जिंदगी में you have figured out some very interesting ways of keeping your dating life interesting, why don't you hit me up and we'll talk about it. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम के स्पेलिंग है ROCHIE. So go ahead, जानू मानू, do what you need to do. लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: माई बॉयफ्रेंड इज आस्किंग मी कि हमें अपने रिलेशनशिप में एक तीसरे इंसान को, प्रेफरेबली एक लड़की को लाना चाहिए जस्ट टू मेक थिंग्स स्पाइसियर इन द रिलेशनशिप. आई टोटली हेट द आइडिया, लेकिन अगर मैं उसे ये कहूँगी तो ऐसा लगेगा ना कि मैं ओल्ड फैशन्ड हूँ एंड आई एम नॉट विद द टाइम्स. मुझे समझ नहीं आ रहा हाउ टू अप्रोच दिस. अगर मैंने मना कर दिया तो ऐसा भी तो हो सकता है दैट ही कुड लीव मी. व्हाट एम आई सपोज टू डू, प्लीज हेल्प.
1: रोशी के DM से
0: ये मैसेज मुझे जिसने लिखकर दिया है उनका नाम हम अनोनिमस रखेंगे फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस. स्वीट हार्ट, अगर आपके बॉयफ्रेंड ने ये कहा है दैट ही वांट्स टू स्पाइस अप योर रिलेशनशिप बाय ब्रिंगिंग अ थर्ड पर्सन जो एक लड़की है, देन मे आई से वन थिंग, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, एंड दैट कुड नॉट जस्ट बी अबाउट दिस, इट कुड बी अबाउट एनी थिंग इन द रिलेशनशिप, अगर एक पार्टनर का बाय इन नहीं है देन अ नो इज अ नो. लेकिन अगर आप यू डोंट वॉन्ट टू कम अक्रॉस एज ओल्ड फैशन्ड, विच आई जेन्युइनली थिंक देर इज नथिंग ओल्ड फैशन्ड अबाउट इट, अगर मैं आपकी जगह होती आई वुड नॉट वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट विद अ थर्ड पर्सन इन द रिलेशनशिप. बट अगर आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है बींग ऑनेस्ट विद योर पार्टनर, ए देर इज समथिंग टू टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप राइट देर कि आप ऑनेस्ट क्यों नहीं हो पा रहे हो, एंड सेकेंडली मे बी यू कैन टर्न अराउंड एंड टेल हिम दैट यू नो वॉट आई एम ओके विद इट. लेकिन एक लड़की की जगह लेट्स गेट अ गाय एंड लेट्स सी वॉट हिज आंसर टू दैट इज, क्योंकि जो भी उसका जवाब होगा दैट विल लेट अस नो कि क्या वो सिर्फ एक इंसान को लाना चाहता है फॉर एक्सपेंडिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग इन द रिलेशनशिप, या वो पर्टिक्युलरली एक बंदी को लेकर आना चाहता है विच इज अनकम्फर्टेबल फॉर यू. बट इफ वी मेक द सेम थिंग अनकम्फर्टेबल फॉर हिम, What will his answer be? Let me know how he reacts to that one. And अगर आपकी भी जिंदगी में मेरे इस anonymous DMer की तरह कोई बहुत ही major भाषण है that's upsetting you and pulling you down, don't let that happen. Just send me your text on Insta या FB and I promise I will respond to that just as much as I did to this one. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So go ahead, send me that DM and कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi. It's hot.
1: तेरी मम्मी की जय

लटीना चिकनी चमेली कट कट रीना सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना तूने यूं तो किया बर्बाद तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद हो ना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद हैं।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका। इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s-2000s का इंडी पॉप क्लासिक है ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की। गाना नंबर 10 पर इस गुरु रंधावा का गाना, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, उन्हीं की आवाज। गाने का नाम है वोग। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे गिर के वोग इस हफ्ते ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद शुभ का नया नवेला गाना मूव्स इस हफ्ते डेब्यू मार के ऑन गाना नंबर 9। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
0: Number 10. 10, 10, 10.

0: गुरु रंधा की आवाज में एक गाने का नाम है वोग, दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। मैं गुरु रंधावा का गाना सुनती हूँ, सुन के तो मुझे पता है इट्स अ गुरु सॉन्ग, पर अक्सर नाम नहीं याद रहता, बिकॉज मोस्टली गाने मुझे एक जैसे साउंड करते हैं। पर कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कहीं से उसका एक इंस्ट्रूमेंटल या इंट्रो म्यूजिक भी सुन लें तो पूरा गाना याद आ जाता है।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bindi ka naam hai RJ Kareka. Instagram par jao, mujhe follow karo. Follow karna ekdam free hai. Mujhe pata hai aap phone hi chala rahe the apna. @RJKareka on Instagram par aake quickly say hello. Koi gaana share karna ho bindaas aake hit me up. कभी ऐसा होता है ना, दोस्तों के साथ बैठे हैं, रेडियो पे कोई गाना बस शुरू हुआ है, इंट्रो म्यूजिक प्ले हुआ है एंड आपने एकदम बता दिया कि अरे दिस इज दिस सॉन्ग, एकदम फुल ऐसे सुप्रीम फीलिंग आती है दैट आई एम बेटर देन यू ऑल, मैं ज्यादा कल्चरली रिच हूँ, मैं ज्यादा अच्छा म्यूजिक जानती हूँ तुमसे, बहुत सही फीलिंग होती है, शाबाश, पैट ऑन योर बैक। लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं कि जैसे ही वो इंट्रो म्यूजिक बजता है आपको नहीं, गाड़ी में चारों दोस्तों को गाना याद आ जाता है, बिकॉज वो गाना, वो इंट्रो म्यूजिक इतना आइकॉनिक होते हैं। पिछले हफ्ते हमने आपको एक गाने का इंट्रो म्यूजिक सुनाया था एंड आपको गेस करना था कौन से वाला गाना है। प्लेइंग इट राइट अगेन फॉर यू। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे राइट आंसर्स आएंगे, बिकॉज ये गाना एक साल पुराना भी नहीं है। गाने का नाम है अर्ज किया है बाय अनूप जैन, इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। इस काउंटडाउन पे आगे ये गाना आने वाला है, कौन से नंबर पे उसके लिए वेट करना पड़ेगा। पर जितना पॉपुलर ये गाना हो चुका है उतना ही सिनोनिमस ये इंट्रो पीस हो गया है। @RJKareka ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ाओ, मैं एक और गाने का इंट्रो म्यूजिक आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। ध्यान से सुनो और बताओ ये कौन सा गाना है। जल्दी जल्दी आके @RJKareka और इंस्टाग्राम पर मुझे बताओ, मेरे दिमाग में तो गाना, गाने के विजुअल्स, वीडियो सब आ गया है। शो में आगे चल के ये गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अभी काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हैं, दिलजीत दोसांझ की आवाज में, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है डीलर, पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर 8।

गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi. It's hot. Gana, Indie Top 10. Kanika ke saath on Mirchi. Number 6.

पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम गया है ये गाना। गाने का नाम है ए अजनबी, आदित्य रिखारी की आवाज अलोंग विद कुटले खान एंड रैवेटोर। इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। ए अजनबी वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले संजीव राठौड़ का नया नवेला गाना, गाने का नाम है बैंगल्स, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।

0: कनेकर। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेकर आते हैं। इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @rjkanika। द शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक। लेकिन म्यूजिक की बात पता है क्या होती है, इट मेक्स यू ट्रैवल इन टाइम। कोई भी धुन कभी भी हमको जिंदगी के किसी किस्से में ले जाती है। लाइफ की मेमोरीज की जो बुक लिखी हुई है हमने, उसका chapter number 1, chapter number 2, chapter number 3 कभी भी खुल जाता है। अभी रिसेंटली एक वीकेंड पे मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं कैफे में थी, थोड़ी कॉफी पी रही थी, आई वॉज एंजॉइंग द वाइब, सेल्फी खींच रही थी, आई वॉज ट्राइंग टू बी इन द मोमेंट, एंड एक गाना चलता है उस कैफे में। वो गाना सुनते ही मैं अपनी लाइफ की मेमोरीज के chapter number 2019 में जा पहुंची। वो गाना मेरे को बिल्कुल ट्रांसपोर्ट करके इसी स्टूडियो में लेकर आया जहां मैंने वो गाना आपके लिए सबसे पहले प्ले किया था।
1: वास्ते जा भी दूं, मैं गवाह मां भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं।
0: गाने का नाम है वास्ते, ध्वनि भानुशाली, निखिल डिसूजा का गाना। एंड ऑनेस्टली मुझे लगा भी नहीं था कि मुझे एंड टू एंड इस गाने के लिरिक्स याद रहेंगे, बट आई हैड आई कॉन्टैक्ट विद एक दो लोग जो मेरे राइट वाली टेबल, लेफ्ट वाली टेबल पे बैठे थे, एंड वो भी इस गाने के साथ लिप सिंक कर रहे थे। एंड आई रियलाइज दैट सम सॉन्ग्स हैव एन इम्पैक्ट जो आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हो। आई रिमेम्बर 2019 में दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉप सॉन्ग्स ऑफ द ईयर। इनफैक्ट गाना इन टॉप 10 का बेस्ट ऑफ 2019 में वास्ते वॉज number 1 सॉन्ग। इस गाने ने कई सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए। ये पहला ऐसा नॉन फिल्म गाना था जिसने YouTube पे 1 billion व्यूज क्रॉस किए। उसके बाद कई गानों के साथ ऐसा हुआ, बट आई हैव टू रिमाइंड यू दैट इस गाने ने वो इफेक्ट क्रिएट किया जो एक फिल्म का गाना करता है। जहां इट डजेंट मैटर कि ये गाना कौन सी फिल्म पे है, किस पे दर्शाया है, अगर कभी आपने सुना तो मेरे जैसे उस कैफे में बैठे बैठे आप ये गाना गाना शुरू कर देते हैं। तो अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग, तनिष्क बागची की कॉम्पोजिशन, ध्वनि भानुशाली की आवाज, लेकिन इस गाने के स्टार है निखिल डिसूजा। ट्रस्ट मी, ये गाना मैंने यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम रील्स, हर जगह सुना है, पर कुछ तो बात है, ये गाना रेडियो पे कुछ ज्यादा ही खूबसूरत साउंड करता है। दिस इज वास्ते प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: मैं एक इंडी पॉप क्विज पूछूंगी आपको, इट्स अ डिफिकल्ट वन। एट आरजे कनेगा ऑन इंस्टाग्राम पर आओ और मुझे बताओ इस गाने वास्ते में ध्वनि भानुशाली का ब्रेकअप होता है, ठीक है? वो ब्रेकअप कितने बजे होता है मुझे आके एट आरजे कनेगा पर बताओ, मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है आपको पता होगा। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी। द सोशल मीडिया सेंसेशन, गाने का नाम है शीशा, मिट्टर और की आवाज इनकी कॉम्पोजिशन, मिट्टर और स्वरा वर्मा की आवाज में शीशा इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर 5।

What a song. Tanishq Bagchi की composition है, ध्वनि भानुशाली है निखिल डिसूजा की आवाज, अराफत महमूद के लिरिक्स हैं राधिका राव एंड विनय सप्रू ने ये वीडियो बनाई. Everything about this song is iconic. For the real OG pop culture fans,

इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 4।

0: Diljit Dosanjh, the man you are, and what a collaboration with Sia. Gaane ka naam hai Ranja. Pichle hafte se ek nahi, do nahi, teen nahi, char bhi nahi, bro. Pure 6 positions super jump kar Ranja was this week on Gaana number 4.
1: Gaana Indie Top 10.
2: Gaana Indie Top 10.
3: Kanika ke saath. On Mirchi
0: sun rahe hain aap. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. And this show is all about the hottest pop music of the week. वो कहते हैं हर गाना अपना लिस्टनर ढूंढ लेता है, पर पता नहीं कुछ गाने हमको रात को ही ज्यादा अच्छे क्यों साउंड करते हैं. लाइक रियली थिंक अबाउट इट, देयर आर सम सॉन्ग्स जो आपने दिन में 2-3 बजे सुना तो ठीक है, यू विल गिव इट लाइक अ 6/10. वही गाना 2 AM पे हिट्स राइट इन द फील्स, दिल के सारे इमोशंस उमड़ जाते हैं. और ऐसा ही एक गाना मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है, उसका नाम है जुल्फे बाय साहिल. दो बड़ी टॉर्चेस के साथ इस गाने पर हम एक स्पॉटलाइट मारना चाहते हैं, बिकॉज ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल आर्टिस्ट. साहिल ने अपनी जर्नी बहुत सारे आर्टिस्ट की तरह कवर्स गाकर ही शुरू करी थी, मैशअप्स गाई, वहीं से अपनी ऑडियंस बिल्ड करना शुरू किया. एंड धीरे धीरे जब लोग उन्हें ट्रस्ट करने लगे, उनके म्यूजिक के साथ जुड़ना शुरू करे, उन्होंने अपना ओरिजिनल म्यूजिक अपने फैंस के साथ शेयर किया. एंड फैंस ने कस के प्यार दिया, बहुत ओपन रहे उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए, एंड दे केप्ट आस्किंग फॉर मोर न्यू सॉन्ग्स. उन्हीं में से एक गाना है जुल्फे. इट्स अ प्रॉपर लेट नाइट कन्फेशनल सॉन्ग, ऐसा मोमेंट जब आप किसी को कॉल नहीं करते हैं लेकिन उनके बारे में सोचना बंद भी नहीं कर पाते हैं. रियलिटी इमेजिनेशन के बीच का जो स्पेस है, जिसको मे बी आप ओवर थिंकिंग कहते हैं, बट उसका भी अपना मजा है. इट्स क्वाइट R&B सॉन्ग, वेरी इंटीमेट, वल्नरेबल है, दैट साहिल की स्पेशलिटी. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. आज की हमारी गाना स्पॉटलाइट में दिस इज जुल्फे बाय साहिल, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इन द टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

साजा मिटा। साहिल की आवाज में दैट वॉज जुल्फे फॉर ऑल द लेट नाइट थिंकर्स। अगर आप थोड़ा ओवर थिंक करते हैं ये गाने को बैकग्राउंड में लगाकर करना, एटलीस्ट बेटर रहेगा। एट आरजे कनिंग ऑन इंस्टाग्राम पर आके मेरे साथ अपने 2 AM वाली प्लेलिस्ट शेयर करो। आई माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ बैक टू द काउंटडाउन। अगले वाला गाना इज मेरा आपका सबका 2 AM, 2 PM, 3 PM, 5 PM सॉन्ग। ये गाना 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार है अनूप जैन की आवाज में। गाने का नाम है अर्ज किया है। इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके अर्ज किया है इस प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3। यू आर लिसनिंग टू गाना इन द टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय। नंबर 3।

0: गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबको ये गाना बहुत पसंद है। 23 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप किया है करण औजला इक्की का बॉयफ्रेंड दिस वीक ऑन गाना नंबर 2।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: You are listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show which is all about the hottest pop music of the week. गाना नंबर 10 से गाना नंबर 2 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। Before we move on to the numero uno song of the week, it's time for what we call
1: Kanika's Kassett Classic.
0: हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है तू बाय द वन एंड ओनली सोनू निगम। सोनू निगम का नाम ही काफी है, ही इज अ फुल रेंज म्यूजिशियन। जितने पॉपुलर सोनू निगम एज अ हिंदी प्लेबैक सिंगर हैं, उतने ही पॉपुलर वो एज अ पॉप स्टार भी हैं। नाउ थिंक अबाउट इट, इंडिया में पॉप स्टार्स कब बने? मतलब गाने बहुत बड़े हो जाते थे, पर उन गानों को हम वो गाना किस मूवी में आया है या उस गाने में कौन सा एक्टर एक्ट्रेस है उससे याद रखते थे। देन केम अ वेव ऑफ आर्टिस्ट अर्ली 90s लेट 90s में, ये पॉप स्टार्स जैसे कि सोनू निगम, शान, लकी अली, जिन्होंने इंडियन इंडी पॉप म्यूजिक को आगे बढ़ाया, जिनके गानों की म्यूजिक वीडियो में कोई बड़ी फिल्मों के हीरो नहीं बल्कि आर्टिस्ट खुद फीचर होते थे। एंड सोनू निगम वाज द पोस्टर बॉय ऑफ दैट चेंज। अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाना शुरू किया उन्होंने। ऑल्दो वो बहुत बड़ी फिल्मों के लिए ऑलरेडी प्लेबैक सिंगिंग कर रहे थे, बट उन्होंने इंडिपेंडेंट पॉप म्यूजिक को भी उतना ही स्पेस एंड अटेंशन दी। एंड उस फेस का ये सबसे मस्ती भरा गाना है। The song is young, very peppy, एक flirtatious energy है, and किसी movie का scene बनने की जरूरत नहीं थी, because in its own, इस गाने ने अपनी एक cinematic दुनिया बनाई। इस गाने में सोनू निगम के साथ बिपाशा बासु is the featuring actor. It was a youth favorite back then, it is till now, तो अपने radio sets की volume बढ़ा दीजिए। सोनू निगम की आवाज में the forever iconic गाने का नाम है तू, it's playing right next for you on our cassette classic this week. बंदी का नाम है कनका, enjoy.

यार ये गाना सुनते हुए लगता है कि टोपी पहनो और उस टोपी को उल्टा कर दूं. समथिंग अबाउट दिस सॉन्ग विच जस्ट सर्व्स स्वैग. सोनू निगम की आवाज में दैट वॉज टू ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक. एल्बम का नाम है किस्मत, म्यूजिक है बिडू का एंड लिरिक्स हैं देव कोहली के. आई कांट बिलीव अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्वैग वर्ड यूज किया बिकॉज मुझे क्रिंज होता है उस वर्ड से. सो टू मेक माई सेल्फ फॉरगिव दैट एंड फॉर यू टू फॉरगिव मी, सीधा बढ़ते हैं इस हफ्ते के न्यूमेरो उनो गाने की टूवर्ड्स. पिछले हफ्ते से अपनी पोजिशन पर बरकरार ये गाना हिस्ट्री बना रहा है. गाने का नाम है बैरन बाय दिस सुपर टैलेंटेड म्यूजिकल एक्ट कॉल्ड बंजारे. उन्हीं की आवाज, उन्हीं की लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन 6 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. थर्ड टाइम इन अ रो बैरन इज ऑन गाना नंबर 1 एंड इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनका. एंजॉय. नंबर 1.

Mirchi. It's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi. It's hot.

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1,
2: हर हफ्ते मैं यहां आता हूं 20 गाने आप और ये काउंटडाउन। लेकिन आज एक बात कहनी है पहले। बॉलीवुड में बहुत शोर है, बहुत चमक, बहुत पीआर, बहुत नॉइज, और उस शोर में कुछ गाने होते हैं जो सच में फील किए गए हैं, लिखे गए हैं, जिए गए हैं। वो गाने अलग सुनाई देते हैं हमेशा। आज का शो उन गानों के बारे में है, उन लोगों के बारे में है जिन्होंने शॉर्टकट्स नहीं लिए, जिन्होंने शोर नहीं मचाया, बस काम किया और वो काम आप तक पहुंचा इस काउंटडाउन के जरिए, मेरे जरिए। हाय, आई एम सुरेन सुंदरम एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव हिंदी म्यूजिक काउंटडाउन। और मैं आपको वो सब सुनाऊंगा जो डिजर्व करता है सुना जाना, नंबर 20 से नंबर 1 तक। तो शुरू करते हैं विद गाना नंबर 20, रणवीर सिंह, धुरंधर, इश्क जलाकर।
3: नंबर 20।

और फिर नंबर 19 पर एक डेब्यू सॉन्ग आदित्य रिखारी और साथ में है श्रेया घोषाल जो 2026 में बिल्कुल एक जेंजी सिंगर की तरह सुनाई दे रही हैं। दिस वन इज कॉल्ड दिल वाले चोर फ्रॉम पति पत्नी और वो दो। क्लियरली चीटिंग इज कूल। नंबर 19।

0: ये था क्या कमाल है नंबर 18 इस हफ्ते। एआर रहमान का म्यूजिक, इरशाद कामिल के अल्फाज और दिलजीत की आवाज। और इन गानों के बावजूद लोग कहते हैं नहीं यार, पुराने गाने ही अच्छे होते थे। मैं हूं सुरेन और आज मैं उस डिबेट को सीधा खत्म करना चाहता हूं। इरशाद कामिल, जिनसे ये बात मैंने खुद पूछी, उनका जवाब सुनिए।
1: Actually, I don't miss anything in today's song. क्योंकि हम पिछले पुराने गाने ना भाई साहब सिर्फ 200 सुन रहे हैं, आपको पता है, और पिछले 100 साल से हम फिल्में बना रहे हैं। आलमारा हमारी पहली पिक्चर थी जिसमें गाने थे, और अब तक हम पिक्चरें बना रहे हैं और रेडियो पे सिर्फ 200-250 गाने चलते हैं पुराने, वही बार बार जो हिट हो गए हैं, और उसके अलावा वो सब आप नहीं सुनते हैं जो आप तक पहुँचा ही नहीं है या आप अप्रोच नहीं कर रहे हैं। आज के जमाने में भी आप आज के टाइम को थोड़ा सा वक्त दीजिए, 10-15 साल दीजिए, आप फिर यही बात दोहराएंगे कि पीछे वाले जो गाने थे वो बहुत अच्छे होते थे, आज से 20 साल पहले जो गाने लिखे जा रहे थे। सो आई डोंट थिंक आई डोंट मिस एनीथिंग।
0: इरशाद भाई ने जो कहा वो सिर्फ सच नहीं है, वो अनकंफर्टेबल सच है। हम 250 गाने सुनते हैं लेकिन बाकी के 50,000 का क्या? वो दब गए, दे वर फॉरगॉटन। इसलिए पुराना जमाना परफेक्ट लगता है क्योंकि उसके बेकार गाने इतिहास ने ऑलरेडी डिलीट कर दिए। आज का म्यूजिक वीक नहीं है, आज का म्यूजिक बहुत ज्यादा है, एंड उसमें से भी एक चन्ना मेरेया है, एक सैयारा है, और ये वाला गाना भी है क्या कमाल है। ये गाने अगर 1975 में आते तो आज हम इन्हें क्लासिक सॉन्ग्स कहते। मेरे लिए आज का पिक ऑफ द वीक भी इरशाद कामिल का ही है। रहमान साहब का म्यूजिक, इरशाद भाई ने क्या कमाल लिखा है, एक गाना जो ऑलरेडी क्लासिक बन चुका है, संग बाय मोहित चौहान। दिस इज तुम हो फ्रॉम रॉकस्टार। पिक ऑफ द वीक।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: नंबर 7
2: Say whoa!

ये था वाओ नंबर 7 लाउड कलरफुल 2026 की ब्लॉकबस्टर एनर्जी एग्जैक्टली एज एडवर्टाइज्ड। बट लेट मी टेक यू बैक टू 2006, 20 साल पहले। वो साल याद है? धूम, क्रिश, डॉन, लगे रहो मुन्ना भाई, बड़ी बड़ी फिल्म्स, बड़ा नॉइज और उससे भी बड़ी ओपनिंग्स। लेकिन आज 2026 में अगर मैं आपसे पूछूं कि उस साल की सबसे एवरलास्टिंग एल्बम कौन सी थी, वो कोई बड़ी फिल्म नहीं थी। वो एक मिड बजट फिल्म थी जिसका नाम था गैंगस्टर। कंगना रनौत, अनुराग बासु डायरेक्ट कर रहे थे, शाइनी आहूजा थे लीड में। वो कहानी हम दोबारा नहीं खोलेंगे। एंड ऑफ कोर्स यू हैड द मोस्ट म्यूजिक हैवी एक्टर इमरान हाशमी। लेकिन प्रीतम दा ने उस फिल्म के लिए जो म्यूजिक बनाया वो फिल्म से बड़ा निकला, कास्ट से बड़ा निकला, कॉन्ट्रोवर्सी से बड़ा निकला। और इस हफ्ते नंबर 6 पे है मैं और तू फ्रॉम धुरंधर 2, एक और गाना जो शायद अपनी फिल्म से बड़ा बन सकता है, लेकिन ये वक्त ही बता पाएगा। लेकिन गैंगस्टर के एक गाने ने वक्त का इंतजार नहीं किया, वो ऑलरेडी क्लासिक बन चुका था जिस रात वो रिलीज हुआ। 2 बजे की नींद, किसी का नाम, भीगी आंखें, ये सिर्फ गाना नहीं है, ये एक फीलिंग है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ऑन अ वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट, दिस इज जेम्स विद भीगी भीगी। स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। नंबर 5।

तेज हफ्ते मैन रियली गहरा हुआ अरिजीत सिंह का गाना जो हर बार नया लगता है। लेकिन कुछ दिन पहले आई थिंक रात के 3 बज रहे थे और मैं बस सोने ही जा रहा था एंड फिर एक वर्जन सुन लिया।

0: तेरा हुआ। इस बंदे का कोई नाम नहीं है, ये अपना चेहरा तक नहीं दिखाता। बस YouTube पे एक चैनल है कॉल्ड मेलोडिक बैश, बस 3000 लोग जानते हैं इसे। That's it, that's his subscriber count। लेकिन वो अकूस्टिक गिटार जो इतना अग्रेसिव है, तार पे तार, जैसे कोई उस दर्द को अंदर रखने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। The song isn't soft, it's not gentle, लेकिन इतना खूबसूरत है, इसलिए तो मैं इस गाने पे आके रुक गया। और वो आवाज, क्योंकि अरिजीत ने जिस तरह गाया है वहां पर भी दर्द है, लेकिन यहाँ अंदर से बिल्कुल एक अलग दर्द निकलता है। और यही तो म्यूजिक की सबसे बड़ी सच्चाई है, एक ही गाना हजार लोगों के हाथ से गुजर के हजार अलग कहानियां बन जाती हैं। मेलोडिक बैश की कहानी मुझे 3 बजे जागने पर मजबूर कर गई, लेकिन अभी के लिए इस फीलिंग के लिए एक और ऐसी आवाज जिससे मैं दूर नहीं हो पाता, नंबर 4 पे कोई और हो ही नहीं सकता, विशाल मिश्रा और उनकी दीवानियत।
1: नंबर 4।

0: आरी आरी अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा। अगेन नंबर टू दिस वीक। माय नेम इज सुरेंद्र सुंदरम और ये है इस काउंटडाउन का आखिरी सेगमेंट। तो मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। बॉलीवुड में आज जो दिख रहा है वो सच नहीं है, वो रिव्यू खरीदा गया है, वो ट्रेंड प्लांट किया गया है, वो पब्लिक इज लविंग दिस फिल्म। एक बिल है भाई जो सब भर रहे हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद करण जौहर कह रहे हैं।
1: Bollywood should stop doing PR. It would be much better, and they should let their achievement speak for itself. Because unfortunately, all of PR is now paid PR. So if you want to say you're looking gorgeous, you just have to pay. If you want to say that you're the best actor on planet Earth, you have to pay. So I think we are on overdrive mode where it comes to PR. But now everything is available at a price, and that is something that could be deeply upsetting, because then you really can't gauge what's connecting and what's not. Because like now you're looking at everything and you're like, are people really liking it, or have they been paid for it? Like, I don't know. I can't tell half the time. Like, you know, many a time it's confusing me, and because even I'm sometimes paying for it, so I don't know.
0: I don't know. ये वही बंदा है जिन्होंने इस मशीन को बनाया, और अब वो खुद नहीं जानते कि ये मशीन आखिर क्या कर रही है। जरा सोचिए, दैट इज द ट्रूथ। एंड देन और फिर एक और कहानी आती है। दिसंबर 5, 2025 धुरंधर, मार्च 19, 2026 धुरंधर 2। रणवीर सिंह कोई इंटरव्यू नहीं, आदित्य धर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। वॉज देयर पेड पीआर? एब्सोल्युटली जीरो। ऑर्गेनिक पीआर? अगेन एब्सोल्युटली जीरो। सिर्फ एक फिल्म, उसके दो हिस्से और उसकी आवाज। 5 महीने बाद धुरंधर इज बॉलीवुड्स हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म एवर, और इस काउंटडाउन पे जो गाना नंबर 1 है 12 हफ्तों के लिए, नो पेड पीआर, इट्स अ जेन्युइन बैंगर। करण ने कहा था, लेट योर वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ, एंड रणवीर एंड आदित्य धर डिड जस्ट दैट। They let their work scream for themselves. This is Shararat, Dhurandhar, 12th week on number 1.

0: सो ये था मिर्ची डॉट 20 का लेटेस्ट एपिसोड, 20 गाने एक जर्नी और आप जो इस सफर को मायने देते हैं। म्यूजिक वही जीतता है जो सच में लिखा गया हो, बाकी सब वक्त तय करता है। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20, सरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi. It's hot.

चल चल चल चल चल चल तुझे बठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बंटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

सैंडविच, हैमबर्गर या बटर रोल, सबसे मैं हूँ टेस्टी, सुन ले मैं हूँ बेबी डॉल। गुस्सा तेरी गोली जैसा बोल तलवार से, दिल का शिकार कर हरी जा।

0: बस तुम रहते हो।
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट, मिर्ची इट्स हॉट।
2: खाना खाना

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

हेलो टू यू फ्रॉम योर ओवर एक्साइटेड कॉफी लविंग म्यूजिक प्लेइंग आरजे. सुन रहे हो तो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर. नाम है प्रिसिला. कसम से ये मेरा डेफिनेशन है. आज का मूड मेरा सिंपल है. कॉफी स्ट्रांग है, वाईफाई स्टेबल है, बॉस का मूड अच्छा है. होपफुली ना कोई ईमेल करे ना कोई मैसेज करे, बस मुझे मेरी जिंदगी आज के लिए जीने दे. क्योंकि हम सब इसी तरह कार्डियो करते हैं, एक हाथ में बेगल दूसरे में कटिंग चाय और दिमाग में ढेर सारी यार इंडिया में इस टाइम पर क्या चल रहा होगा वाली मेमोरीज. तो अभी फिलहाल अगर तुम ट्रैफिक में अटके हुए हो या जूम कॉल पर भटके हुए हो, साथ में मुझे रखो. मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग्स. और जाकर मुझे जल्दी से फॉलो कर लो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल name, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp and mera number hai 9033 mirchi, that's 9033 647 244. Mirchi mornings has just begun. Very good morning to you. Stay tuned and stay hot.

0: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
1: ओ कुड़ियो गुड़ किन खालिया, गुड़ वाली चाह किन पीती, बुआ जिदा नाड़ा किन खिचे।

गुड मॉर्निंग माय देसी पीपल, मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में। वेलकम बैक टू मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब यहां पर हम चलने वाले हमारी इमेजिनरी टाइम ट्रैवलिंग मशीन में। 1607 में जेम्सटाउन वर्जीनिया बिकेम अमेरिकाज फर्स्ट परमानेंट इंग्लिश सेटलमेंट। 1804 में लुइस एंड क्लार्क बिगान एक्सप्लोरिंग द अमेरिकन वेस्ट। 1948 में इजराइल डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस एंड बूम, वर्ल्ड हिस्ट्री चेंज्ड ओवरनाइट। 1955 में द वॉर्सो पैक्ट वाज साइंड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। 1973 में नासा लॉन्च्ड स्काईलैब, अमेरिकाज फर्स्ट स्पेस स्टेशन। और यहीं से इंडियन पेरेंट्स का सपना कि हमारा बेटा साइंटिस्ट बनेगा शुरू हुआ। 1992 में इंडिया ऑफिशियली बैन द LTTE, मेकिंग अ मेजर पॉलिटिकल डिसीजन बैक होम। एंड नाउ कम से हाई ऑन इंस्टा एंड एक्स एट मिर्ची प्रिस, that's my handle name, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp पर मेरा नंबर है 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

Mirchi, it's hot. Hey there, this is your girl Priscilla with you and you're listening to Mirchi Mornings. तो सुनो, the Cannes 2026 में our very own Alia Bhatt made a glam entry on the red carpet. लेकिन social media being social media, एक video went viral claiming photographers were too busy clicking someone else and ignored her completely. एक बंदे ने तो ये भी लिख दिया, who is she waving at? Internet पे मतलब एक second के अंदर fashion critic, body language expert और FBI analyst सब बन जाते हैं लोग. प्लॉट ट्विस्ट ये है कि एक्टर अली गोनी जंप्ड इन सपोर्टिंग आलिया एंड बेसिकली सेड हेलो शी इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया ऑन अ ग्लोबल स्टेज शो सम रिस्पेक्ट. वैसे आलिया वाज आल्सो स्पॉटेड चैटिंग विद फॉर्मूला 1 स्टार कार्लोस साइंस जूनियर. यस, स्पीड मीट्स स्पार्कल. द इंटरनेट कॉल्ड इट रैंडम बट आइकॉनिक कॉन्वर्सेशन एंड ऑनेस्टली इट लुक लाइक बॉलीवुड एंड फॉर्मूला 1 एक्सीडेंटली मैच्ड ऑन अ वेरी एक्सपेंसिव डेटिंग ऐप. ऑल्सो कैन वी अप्रिशिएट हाउ देसीज रिएक्ट टू सेलिब्रेट इंटरक्शंस. एक हैंडशेक हुआ नहीं कि shaadi.com टाइप की फीलिंग आ जाती है. वैसे फिलहाल तुम मुझसे हैंडशेक कर सकते हो. इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल वही है मिर्ची प्रेस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. राइट नाउ स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

Good morning, guys. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ मैं सुन रही हूँ मिर्ची मॉर्निंग्स. एंड नाउ इट्स टाइम दैट वी चेक आवर वेदर अपडेट. तो अभी फिलहाल टेम्परेचर इज सिटिंग टाइट एट 53 डिग्रीज फारेनहाइट एंड इट्स अ बिट क्लाउडी, लेकिन फील हो रहा है तापमान 54 डिग्रीज फारेनहाइट के आसपास. एंड अराउंड 1 PM आफ्टरनून में स्काइज विल टर्न पार्टली क्लाउडी. सो बेसिकली सन बोलेगा हेलो गाइज, मैं भी अटेंडेंस लगाने आया था. टुडेज हाई विल गो अप टू 67 डिग्रीज फारेनहाइट एंड लो विल गो एज डाउन एज 53 डिग्रीज फारेनहाइट, विच मीन्स मॉर्निंग में हुडी की जरूरत पड़ने वाली है. यस्टरडे द टेम्परेचर टच्ड 74 डिग्रीज फारेनहाइट, लेकिन टुडे इट्स गोना बी कूलर. मतलब वेदर आज थोड़ा सा मेलो डाउन हुआ है. गुड न्यूज ये है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में जीरो रेन इज एक्सपेक्टेड. सिर्फ 1 mm की रेन हुई थी लास्ट 24 आवर्स में. सो योर हेयर, योर स्नीकर्स एंड योर फ्रेशली ब्लो ड्राइड बैंग्स आर ऑफिशियली सेफ. ऑल्सो आज भी लेयर के प्लेयर बनो, ढेर सारा पानी पियो, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एंड साथ साथ में मिर्ची के वाइब को कैरी करो. मुझे यानी कि प्रिसिला को फॉलो करो इंस्टाग्राम और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. फिलहाल टाइम है मिर्ची दार बैंगर्स का. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन की बात होर सी।
1: अरे 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

Hey there, my Desi family. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Mornings. And सुनो, producer Namit Malhotra just dropped a statement about the upcoming Ramayana starring Ranbir Kapoor. And honestly, the confidence level is 1000%. He said if audiences don't like the film, the team will fold hands and apologize. अरे वाह. Indian customer service meets mythological blockbuster. Lekin honestly, respect for the honesty, yaar. Because making Ramayana is not just another movie project. It involves emotions, expectations, nostalgia and sab kuch attached ho jata hai. Especially Indian audience aisi hai, bahut zyada emotional hai. The film is reportedly being made on a budget of 4,000 crore rupees. That's 4,000. Oh my God. And at this point, हमारे collective bank accounts have said हम log out कर रहे हैं. Apparently, it's a two-part cinematic spectacle with massive efforts going into the actors, visuals, directions. Basically, जितने भी लोग हैं, वो सारा अपना full संस्कारी energy इसमें डाल रहे हैं and creating something even larger than Avengers. And you and I being Desi audiences, हम trailer का background music पर भी full PhD analysis करते हैं. VFX ठीक था, नहीं था, हनुमान जी का चेहरा थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था या बहुत ही अमेजिंग लग रहा था, उनकी डायलॉग डिलीवरी थोड़ी सी पावरफुल होनी चाहिए थी, ये सारी बातें हम लोग करते हैं. ऑनेस्टली दो, इफ डन राइट, दिस कुड बी ह्यूज ग्लोबली फॉर इंडियन स्टोरी टेलिंग. सो आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस एंड पॉपकॉर्न रेडी. फिलहाल तुम जल्दी से अपना इंस्टाग्राम खोलो, ढूंढो मेरा नाम, मिर्ची प्रिस इज द हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड फॉलो मी देयर. और व्हाट्सएप भी कर सकते हो मुझे 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244. Right now, stay tuned and stay hot.

0: ऑलराइट, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स और अब सुनने वाले हो गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट।
1: राज ज्वेल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड रेडिंग एट $4,700, $4,700 पड़ रहे हैं उसके साथ। आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं और गोल्ड के प्राइसेस अप्रोक्सीमेटली अबाउट 15% इंडिया से कंपेरिजन में यूनाइटेड स्टेट्स में सस्ते हैं। जी हाँ, गोल्ड के प्राइसेस अमेरिका में 15% हिंदुस्तान से सस्ते हैं। कैसे, आइए राज ज्वेल्स की टीम से आप कनेक्ट करें और गोल्ड के प्राइस का कंपैरिजन करते हुए रिस्पॉन्सिबली गोल्ड में राज ज्वेल्स के साथ इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
0: एंड दैट्स इट फॉर गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट फॉर टुडे। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. वेलकम टू राशि जोन नंबर वन ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स.
1: मिर्ची राशि जोन.
0: एरीज यानी मेष राशि, मनी स्ट्रेस कम होने वाला है. ओके, सो डोंट पैनिक. लकी कलर फॉर यू इज इलेक्ट्रिक ग्रीन. लकी नंबर इज 19. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, बिग प्लानिंग एनर्जी टुडे. लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस करो एंड यस, स्प्रेडशीट्स कैन बी हॉट. लकी कलर फॉर यू इज ब्लू. लकी नंबर इज 42. जेमिनी यानी मिथुन राशि, समथिंग दैट वॉज हॉरिबल फॉर यू बिफोर बस खत्म हो गया है समझो. यू फाइनली आउट ग्रोइंग ओवर थिंकिंग फेज. लकी कलर इज ऑरेंज. लकी नंबर इज 8. कैंसर यानी कर्क राशि, आज आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करो यार. एवरीबडी सीज लाइफ डिफरेंटली, स्पेशली पीपल हु पुट केचप ऑन बिरयानी. लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक. लकी नंबर इज 27. लियो यानी कि सिंह राशि, स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ यार. जंप इनटू दैट चैलेंज. कॉन्फिडेंस फर्स्ट, पैनिक लेटर. लकी कलर फॉर यू इज डस्ट कलर. लकी नंबर इज 3. एंड वर्गो यानी कन्या राशि, स्टे ट्रू टू योरसेल्फ टुडे. समवन पर्सुएसिव मे ट्राई चेंजिंग योर वाइब, बट योर इंस्टिंक्ट्स आर smarter than group chats. Lucky color is grey color. Lucky number is 31. And that's it for Rashi Zone number 1. Second part of Rashi Zone लेकर आऊंगी थोड़ी सी देर में. तब तक तुम मिर्ची दर बैंगर्स सुनो और मुझे फॉलो करो. मिर्ची प्रेस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स. एंड व्हाट्सएप पर अपने मैसेजेस ड्रॉप करो 9033 मिर्ची पर. दैट्स 9033647244. Right now, stay tuned and stay hot.

0: वेलकम बैक टू मिर्ची मॉर्निंग्स. मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. आई हैव गॉट विद मी राशि जोन नंबर टू. लेट्स हेड स्ट्रेट इनटू दैट.
1: मिर्ची राशि जोन.
0: लिब्रा यानी तुला राशि, थोड़ा सीक्रेटिव रहना बेटर है. नॉट एवरी प्लान नीड्स पब्लिक अनाउंसमेंट. नजर भी एक चीज होती है बॉस. लकी कलर इज प्लम कलर. लकी नंबर इज 11. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर ऑन फायर टुडे. से व्हाट यू फील कामली बिफोर योर फेस सेज इट अग्रेसिवली. लकी कलर फॉर यू इज रेड. लकी नंबर इज 22. सैजिटेरियस यानी धनु राशि, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर. डेलीगेट करो अपने काम. Even CEOs don't carry their own office chairs. Lucky color is turquoise. Lucky number is 5. Capricorn yani makar rashi, your talent is shining bright today and honestly some people are nervous about your glow up. Continue anyway. Lucky color is silver. Lucky number is 40. Aquarius yani kumbh rashi, someone close may say something unbelievable today but surprise, they might actually be right. तो प्लॉट ट्विस्ट ये है कि उनकी बात सुनो. लकी कलर इज नियॉन मिंट. लकी नंबर इज 14. पाइसीज यानी मीन राशि, मेंटल फॉग लिफ्टिंग अलर्ट. आज क्लैरिटी मिलेगी तुम्हें एंड योर कम्युनिकेशन गेम इज एक्स्ट्रा पावरफुल टुडे. स्पीक अप बिफोर समवन एल्स टेक्स क्रेडिट फॉर योर आइडिया. लकी कलर इज सनसेट पीच. लकी नंबर इज 29 एंड दैट वाज योर राशि जोन नंबर 2. मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स. मुझसे कनेक्ट करना है तो इंस्टा और एक्स पर ढूंढो मिर्ची प्रेस, दैट इज MIRC HIPRIS, and WhatsApp पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची. That's 9033647244. Right now, stay tuned and stay hot.

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

my beautiful people, मैं हूँ प्रिस्टला तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Mornings and now it's wrapping up. And जाने से पहले तुम्हें एक American influencer के funny and super honest struggle के बारे में बताती हूँ. Regarding South Indian food that has gone totally viral online. From dosa to other iconic dishes, his reactions were pure gold. Social media loved how genuinely curious and authentic he was. यार वैसे honestly ना मुझे बड़ा मजा आता है जब foreigners discover करते हैं Indian food. That's like my favorite genre online. ये इन्फ्लुएंसर जो है ये ऑनलाइन जाने जाते हैं डाइन विद केंट के नाम से. सो यू कैन गो एंड चेक आउट द वीडियो. सो फर्स्ट ही सीज द डोसा एंड ही गोज, इज दिस क्रिस्पी बरीटो पैनकेक? मीनवाइल एवरी साउथ इंडियन आंटी इज लिस्टिंग टू दिस एंड सेइंग बेटा रिस्पेक्ट द डोसा. बट जोक्स अपार्ट, इट्स ऑनेस्टली सो कूल सीइंग रीजनल इंडियन क्विजीन गेटिंग सो मच ऑफ ग्लोबल लव, बिकॉज इंडियन फूड इज नॉट जस्ट बटर चिकन एंड नान. ओके, वी गॉट सांबर्स, वी गॉट रसम, वी गॉट अपम, वी गॉट पोड़ी, we've got filter coffee. Basically we have a lot of food to cover and the best part is the food really really connects people and mostly Indian food is loved globally, right? Acha, aaj breakfast mein kya kha rahe ho? If it's dosa then tell me. Mirchi Pris is my handle name Instagram or X par. Abhi ke liye meri taraf se tada bye bye, you stay tuned and be good. Milungi tumse kal same time same place same frequency. Tab tak tumhare liye Mirchi dar bangers chhod kar ja rahi hu. Stay tuned and stay hot.

0: फ्रेंच फ्राइज लगा रखा है। स्लेट के टेस्ट पर पलने वाले से आप फ्रेंच फ्राइज बेहतर है ये जिद नहीं लगा सकते हो।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on मिर्ची। और हाँ, मैं ही हूँ वो जिसने फ्रेंच फ्राइज के टेस्ट को बाद में समझा। उससे कई साल पहले से तो हमारी लाइफ में पेंसिल की स्लेट्स आ गई थी यार। हालांकि ये वो टाइम था जब हमारी स्लेट्स यूज करने की उम्र चली गई थी, लेकिन स्लेट पेंसिल खाने की आ गई थी। डब्बे के डब्बे खा जाते थे यार, शुगर ऊपर वाले का कि किडनी स्टोन्स नहीं हुए, वरना कसर तो हमने कोई नहीं छोड़ी थी। मम्मा से छिपा छिपा कर कपड़ों के बीच में रखने पड़ते थे वो डब्बे, और इसकी भीनी भीनी खुशबू बिन बारिश के भरी गर्मी में भी ना सौंधी मिट्टी का फील और खुशबू दे जाती थी। ओए होए होए होए, क्या आपने भी स्लेट पेंसिल और चॉक्स की लत लगाई अपने आप को कभी? अगर हाँ तो डीएम करो और माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। और फिलहाल के लिए 90s के गियर में मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को डालती हुई मैं आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मुझे

0: 105.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Free.

0: सारा ज़माना है सारा का दीवाना।
1: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: जब मूवी रिलीज हुई थी ना, तो ट्रक वाले ये वाला हॉर्न बजाते हुए निकल जाते थे।
1: मिर्ची VCR।
2: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड क्लियरली आप समझ गए होंगे कि आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म धूम। वेल, इस फिल्म का नाम धूम कैसे आया ये भी सोचने की बात है, क्योंकि इसके पीछे एक कहानी है। एमी इसका नाम धूम नहीं है। वेल, आदित्य चोपड़ा को ये फिल्म जो थी ना, इसका आइडिया, मतलब पूरी स्टोरी लाइन जो है उसका आइडिया 1979 में बनी एक मूवी थी काला पत्थर, उससे आया था। एंड इनफैक्ट दिस वॉज वन ऑफ हिज फादर्स एक्शन थ्रिलर्स। एंड द टाइटल ऑफ दिस फिल्म केम फ्रॉम इसी फिल्म का एक गाना, धूम मचे धूम, which eventually was changed to धूम मचाले धूम मचाले धूम। मजेदारी वाली बात तो ये है कि इस फिल्म में हीरो अमिताभ बच्चन थे और अभिषेक बच्चन धूम के हीरो बन गए। लेकिन हाँ, एक और बड़े इत्तेफाक की बात ये है कि अमिताभ बच्चन, जिनके बेटे अभिषेक बच्चन ने धूम में काम किया है, हेमा मालिनी जिनकी बेटी ईशा देओल ने धूम फिल्म में काम किया है, एंड यश चोपड़ा द डायरेक्टर, उनके बेटे उदय चोपड़ा ने इस फिल्म में काम किया है, इन तीनों ने ही एक फिल्म में साथ काम किया था। यश जी की एक फिल्म थी त्रिशूल, और उसमें ये पूरी की पूरी कास्ट थी, और वही उनके बच्चों की कास्ट कट कॉपी पेस्ट धूम में हो गई थी। रह गए जॉन, जो कि एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से थे, लेकिन जॉन के साथ अभिषेक बच्चन ने काफी अच्छी दोस्ती निभाई यार। सो मच सो दैट कि अभिषेक बच्चन जो थे ना, वो जॉन की वजह से बाइक्स बहुत पसंद करने लग गए थे, क्योंकि ऑफ कोर्स जॉन को पूरा ज्ञान था बाइक्स का, और जब ये दो जेंटलमैन बैठते थे बातें करने के लिए तो बाइक्स के बारे में इतने डिस्कशन होते थे कि इवेंचुअली अभिषेक बच्चन इस चीज को लेकर राजी हो गए थे कि वो भी एक बाइक खरीदेंगे। वो अलग बात है कि अमित जी बच्चन जी ने उनको मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं नहीं, बाइक वाइक नहीं लेगा कोई भी यहाँ पर। और फिर किसी ने बोला पेंसिल, अभिषेक बच्चन का बाइक खरीदना हो गया कैंसिल। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: किस्मत बाबू भैया, किस्मत बहुत बड़ी चीज होती है। आपको पता है जब धूम रिलीज हुई थी, एट दैट टाइम धूम को बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज मिले थे फ्रॉम द क्रिटिक्स, लेकिन उसके बावजूद दिस फिल्म वॉज अ बॉक्स ऑफिस हिट।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड आज धूम के बारे में बात करते हुए इतनी सारी बातें हैं जो धूम के बारे में पता लगी हैं। पर आपको पता है संजय गढ़वी, हु इज द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, उन्होंने इनिशियली डिसाइड किया था कि वो टॉप ऑफ द लाइन स्पोर्ट्स कार इस्तेमाल करते हुए इस फिल्म को बनाएंगे। यानी कि इट वुड नॉट हैव बीन अबाउट बाइक्स, इट वुड हैव बीन अबाउट स्पोर्ट्स कार। लेकिन इवेंचुअली दे हैड टू डू बाइक्स बिकॉज ऑफ द रीजन कि अगर कार्स करते तो फिर एक्टर्स की शक्लें दिखाने बड़ी मुश्किल हो जाती है और काफी मशक्कत और मेहनत लगती है उसके पीछे। तो इस वजह से उन्होंने सीधे बाइक्स को यहाँ बोल दिया। एंड इस फिल्म को शूट करते करते संजय गढ़वी ने काफी सारे ऐसे सीन्स शूट किए थे विच वर वेरी स्टीमी एंड हॉट बिटवीन अभिषेक बच्चन एंड रिमी सेन। लेकिन फिर हुआ ये कि इवेंचुअली सबके सब बड़े अप्रिहेंसिव हो गए इस चीज को लेकर कि यार ये जो हमने सीन्स शूट कर लिए हैं ये कुछ ज्यादा ही हो गया है, मतलब यू नो इट्स नॉट गोइंग टू गो वेल विद द ऑडियंस। तो उन लोगों ने उन सारे सीन्स को कट करके रख लिया और कहा कि यार इसको हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि ऑडियंस को अगर ये सब पसंद नहीं आया ना तो फिल्म में दिक्कत हो सकती है। आई थिंक तब तक मर्डर रिलीज नहीं हुई थी शायद। एनीवेज, बट पता है क्या, इस फिल्म के लिए संजय दत्त को जॉन इब्राहिम के रोल के लिए साइन किया गया था, लेकिन इवेंचुअली दत्त साहब के पास डेट्स नहीं थी तो ही हैड टू ऑप्ट आउट। एंड देन आदित्य चोपड़ा ने डिसाइड किया कि वो अपने विलन के कास्ट के लिए एक यंगर एक्टर को लेंगे एंड देन जॉन इब्राहिम केम इनटू द पिक्चर। अच्छा, प्रीतम दा की भी एक कहानी है, उन्होंने ऑफकोर्स इस फिल्म का म्यूजिक डायरेक्ट किया, बट वाइल वो धूम धूम जो गाना था उसको रिकॉर्ड कर रहे थे, कंपोज कर रहे थे, तो टाटा यंग ने जब इस गाने को गाया था तो उनको रिकॉर्ड करने में बड़ी दिक्कत आई थी बिकॉज टाइटल है धूम और टाटा यंग बोल रही थी धूम, और उनको न जाने कितनी बार करेक्ट करने के बावजूद जब करेक्शन नहीं मिला तो इवेंचुअली धूम वॉज लेफ्ट टू धूम, और गाने में भी अब वैसा ही आया है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: देयर वाज अ टाइम जब हमारे घर पे केबल नहीं था तो पड़ोसियों का टीवी हमारा टीवी हुआ करता था।
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड ये मेरी आदत नहीं थी कि मैं कहानी घर घर की देखती, लेकिन हमारे पड़ोस वाली दीदी जो थी ना वो कहानी घर घर की देखा करती थी, और जो जो वो देखती थी वो मैं भी देखती थी, तो मुझे भी आदत हो गई कहानी घर घर की देखने की। मतलब देयर वाज अ टाइम जब इनिशियली मुझे ऐसा लगता था कि हाँ चलो ठीक है देख रहे हैं, फिर उसके बाद एक ऐसा टाइम आया कि मैं भी एक्साइटेड हुआ करती थी कि दीदी कहानी घर घर की का टाइम हो गया है, और फिर हम सब साथ में बैठ के टीवी देखा करते थे। लेकिन आपको पता है कहानी घर घर की में एक कहानी ऐसी थी जो घर घर की नहीं थी, वो एक ही घर की कहानी हुई, बिकॉज इट वॉज अ लव स्टोरी। किसके बीच में? मानव गोहिल और उनकी नाउ वाइफ एंड देन फ्रेंड श्वेता कवात्रा की। हालांकि इन दोनों का प्यार लव एट फर्स्ट साइट नहीं था, लेकिन सबसे पहले इन दोनों के बीच में ना दोस्ती शुरू हुई थी, विच इवेंचुअली इवॉल्व्ड इनटू लव। दोनों ने इस शो में साथ में काम किया एंड दे यूज्ड टू मीट क्वाइट ऑफन ऑफ कोर्स ऑन द सेट्स ऑफ द शो, लेकिन इट वॉज इन फैक्ट काउच ऑन द सेट ऑफ कहानी घर घर की जिससे की इनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी। होता ये था की देयर वॉज दिस काउच जो की सेट्स पे रखा रहता था, और श्वेता जो थी ना वो अक्सर उस काउच पर जाकर एक नैप ले लिया करती थी ड्यूरिंग द शॉट। Now, एक दिन ऐसा आया जब उनके काउच पर मानव नैप ले रहे थे, और श्वेता को ये बात अच्छी नहीं लगी बिकॉज इट वॉज हर टाइम टू टेक नैप। तो उन्होंने इस बात को चुप्पी साधते हुए नहीं अपना लिया, उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि मानव को ये बात पता लगे कि वो जिस काउच पर इतने हक से सो रहे थे ना वो हक श्वेता का था, और वो टाइम भी श्वेता का था नैप लेने का। एंड ऑफकोर्स ये जो इंटरेक्शन था ये बहुत स्वीट तो नहीं था, लेकिन इवेंचुअली हुआ ये कि इस इंटरेक्शन के बाद इन दोनों की दोस्ती के दरवाजे जो थे वो खुल गए। अब जब दोस्ती के दरवाजे खुल जाते हैं ना तो वो कहा करते हैं ना कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं रह सकते। आई थिंक इनके केस में वो बात सच हो गई, और ऊपर वाला चाहता था कि ये बात सच हो। और दोस्ती के दरवाजे खुलने के बाद प्यार ने दस्तक दी और दिल के दरवाजे खुल गए दोनों के लिए। इवेंचुअली वी ऑल नो देम एज अ वेरी ब्यूटीफुल कपल, एज वेल एज अ कपल जिनकी केमिस्ट्री देखकर कई सारे कुंवारे दिलों ने कहा है कि हाय जोड़ी हो तो ऐसी। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म कभी खुशी कभी गम। आई जस्ट लव दिस ट्रैक, द म्यूजिक, द पिक्चराइजेशन एंड ऑफ कोर्स माय फेवरेट्स काजोल एंड शाहरुख खान है इस गाने के अंदर। लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दिस सॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है कि अभी ना फिलहाल सूरज को थोड़ा सा और मध्यम कर देना चाहिए। लाइक आई रियली रियली फील कि काश कि सूरज के अंदर ना एक ऐसा कुछ घुमाने वाली चीज होती जिससे कि हम सूरज का वॉल्यूम जो है ना उसको थोड़ा और कम कर सकते थे। बाय वॉल्यूम आई मीन द हीट का वॉल्यूम, जो कुछ ज्यादा ही बढ़ता चला जा रहा है डे बाय डे। नहीं क्या, मतलब सीरियसली यार, गर्मी दिन ब दिन जो बढ़ती चली जा रही है, बिल्कुल बचपन के एड्स की याद आ रही है इसको झेलते झेलते, जिसमें कि सूरज जो था वो पाइप से बच्चों की एनर्जी चूसा करता था। एंड नाउ आई फील कि वो एड है तो बस एक इमेजिनेशन, बट भाई साहब गर्मियों के दिनों में दैट इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइव्स यार।
1: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, अब हमारी energies को pump up करने की बारी आ चुकी है। And there is this one thing जैसे कि मेरी energy और आपकी energy दोनों ही rejuvenize हो जाती है। And that is मान ना मान करो गानों की पहचान, जहां पर मैं आपके लिए a set of songs चूज करती हूँ from 90s या early 2000। उन गानों की धुनों को निकालती हूँ, मिलाती हूँ, जुलाती हूँ और आपके सामने उसको सुनाती हूँ। आपको गेस करना होता है कि ये दो गाने कौन से हैं। और आज का जो मिक्स है, इट गोज दिस वे। ओके जी, अब बस इतना करना है कि डीएम करना ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा, अपना नाम, अपने शहर का नाम और इन दोनों गानों के नाम लिखकर मुझे भेज दो। एंड स्टे ट्यून्ड, रहो विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बस बहुत हुआ. प्रीतम दा के लिए अब एक शब्द और नहीं सुनूंगी मैं.
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान.
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड सच्ची बात है यार, कितना बोलते हैं यार, पूरी दुनिया बोलती है प्रीतम दा जो है वो इधर से कॉपी कर लेते हैं, उधर से कॉपी कर लेते हैं. इनका म्यूजिक ओरिजिनल होता है कि नहीं होता है? ऑफ कोर्स होता है यार. इनफैक्ट मैं आज आपको उनका एक ऐसा गाना बताती हूँ जो उन्होंने कंपोज किया है, जो उनका ओरिजिनल है, उन्होंने कहीं से कॉपी नहीं किया है. लेकिन इस गाने को कॉपी किया गया बाय अ सर्बियन सिंगर. और पता है कौन से गाने की बात कर रही हूँ मैं? वेल, जब भी मेट का ये गाना जिसे प्रीतम दा ने कंपोज किया है, दैट वाज एक्चुअली पिक्ड अप बाय अ सर्बियन सिंगर. एंड जब भी मेट का ये गाना 2007 में रिलीज हुआ था, 2010 में देयर इज दिस सर्बियन सिंगर जिनका नाम है दारा बबामरा, एंड शी केम अप विद दिस सॉन्ग ऑफ हर्स जिसका नाम है नेमा मिलाना. सुनो जरा. चौक गए? वेल, मुझे तो ये बात बताते हुए ना बड़ी खुशी हो रही है और बड़ी तसल्ली भी हो रही है कि चलो ठीक है यार, प्रीतम दा ने कहीं से अगर उठाया भी है कोई कट कॉपी पेस्ट करते हुए म्यूजिक का पीस, तो कई और लोगों को इंस्पायर भी किया है अपने ओरिजिनल पीसेस के साथ. क्या बोलते हो? स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: वो कहते हैं ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. वेल द सेम वेंट फॉर माधुरी दीक्षित, क्योंकि जब उन्होंने तेजाब की तो सबको बहुत डाउट हुआ कि ये कैसे करेगी.
0: मिर्ची 90s का सेट.
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और इन सब में द सिंगर ऑफ द फेमस सॉन्ग 1 2 3 अलका याग्निक भी थी. उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्होंने ये गाना गाया तो ऑफ कोर्स शी न्यू कि गाने में कितनी एनर्जी लगी है और उतनी ही एनर्जी इस गाने को परफॉर्म करने में भी लगनी है. लेकिन अलका ने माधुरी को देखा तो शी थॉट ये लड़की तो कितनी चुपचाप है, ये कैसे परफॉर्म करेगी इस गाने पर. लेकिन जब गाना बना तो सबको चुप वाली माधुरी की जगह पटाका माधुरी देखने को मिली. आपको नहीं लगता कि हर इंसान के अंदर दो पर्सनालिटीज होती हैं? एक जो वो खुद के साथ होता है और दूसरा जो वो सबके सामने होता है. और सबके सामने माधुरी डायनामाइट ही निकली. वन ऑन वन और अकेले में वो कितनी ही चुप क्यों ना हो. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

Mirchi, it's hot. 98.3 Mirchi, it's hot.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: डियर बक्से,
2: यादों को चिट्ठी।
1: एक शादी के लिए मम्मा से उनकी साड़ी उधार मांगी थी, तो आज बहुत दिनों बाद तुम्हें खोला और जैसे वक्त की परतें एक एक करके उतरने लगी, तुम्हारी जंक लगी हुई कुंडी और वो हल्की सी मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, जैसे पुरानी यादों की गठरी खुल गई हो। तुम सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं, तुम तो मेरी यादों का खजाना हो यार। तुम में बंद वो माँ की पुरानी साड़ियाँ, डैडी के खत, मेरे बचपन की तस्वीरें, टूटी फूटी गुड़ियाएं और वो डायरी, सब कुछ जैसे फिर से जी उठा। हमारी हर एक घर की शिफ्टिंग में तुम ही तो थे जो हमारे साथ सफर किया करते थे, कभी कपड़ों से भरे, तो कभी किताबों से, तो कभी चादरों और बर्तनों से। तुमने तो जैसे हमारा सारा बोझा उठाने का जिम्मा ले लिया था, वो भी बिना कोई शिकायत किए। कभी एक जमाना था कि तुम बेडरूम में खुले चौड़ में रखे जाते थे, फिर तुम ड्राइंग रूम का हिस्सा बन गए, जहाँ तुम 2-in-1 की फैसिलिटी थे, स्टोरेज भी और फर्नीचर भी। फर्नीचर बनकर एक सेटी की सूरत में तुम ड्राइंग रूम का लुक इम्प्रूव किया करते थे, और फिर आए फैंसी फर्नीचर्स, जिसके चलते अब तुम स्टोर रूम के कोने में रहने लगे हो। लेकिन तुम फिकर मत करो, बचपन के फील को मैंने आज भी जिंदा रखा है। तुम मेरे कमरे में सेटी के तौर पर रहते हो, और तुम में ना मैंने अपने बचपन से जुड़ी सारी यादों को संजो कर रखा है। तुम्हें जब खोलती हूँ ना, तो पुरानी यादों की भीनी भीनी खुशबू हमेशा मुझे घेर कर बैठ जाती है। और मैं अगर तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दूं ना, तो मैं वो इंसान हूँ जो तुम्हारे अंदर कैद है बक्से। हालांकि मैं बाहर हूँ, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे अंदर बंद है। तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। यू ट्यून इन टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म मन इज कैसेट के साइड बी का तीसरा गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: तो जी, इस गाने में फरमाया गया है कि मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन ना जाने जुड़ गया कैसे ये बंधन। और एक्चुअली ये वो सवाल है, जब हम किसी के प्यार में पड़ जाते हैं ना, तो हम कर रहे होते हैं ये सवाल, क्योंकि कहते हैं ना कि प्यार सोच समझ कर नहीं किया जाता। सही कहते हैं। आप जब सोच रहे होते हो कि ना नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, मुझे तो प्यार व्यार में पड़ना ही नहीं है, अचान चूक ऐसी चीज होती है कि कोई आपकी जिंदगी में आता है और आपको प्यार हो जाता है। धत तेरी की, जो प्लान किया था वो तो हुआ ही नहीं ना। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली लव इज। लव कभी भी प्लान नहीं होता, इट्स ऑलवेज एंड ऑलवेज अनप्लान्ड। और इन चंद सवालों को लेकर मन का ये पूरा गाना बना दिया गया। और इस गाने में आगे एक बहुत सही बात कही गई है, और वो ये है कि प्यार कहते हैं किसे, होता है ये दर्द क्या, आज पहली बार ये मैंने जाना दिलरुबा। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें मैं बदकिस्मत नहीं कहूंगी, खुशकिस्मत कहूंगी, कि अगर आपको एक से ज्यादा बार प्यार हुआ है, क्योंकि लोग अक्सर यही कहते हैं ना कि अभी तक सच्चा प्यार मिला नहीं। देखो, प्यार हमेशा सच्चा ही होता है। सिचुएशंस ऐसी होती है कि आपको आपका प्यार जो है वो मिल नहीं पाता है फॉर एवर इन लाइफ। तो क्या होता है कि आप दो तीन बार किसी से प्यार में पड़ जाते हो, या यूं कहें कि दो तीन लोगों के प्यार में पड़ जाते हो और वो दो तीन बार होता है। लेकिन नॉट टू वरी, आपका जो प्यार है, जो जिंदगी भर के लिए आपके लिए बेकरार है और बरकरार रहेगा, वो भी आपको मिल ही जाएगा यार। और आपके लिए यही दुआ करती हुई, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू से हम है रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते, जाते जाते यही गाना आपके लिए लगाती हुई जा रही हूँ। और यहाँ के अलावा अगर आपको मुझे कहीं तलाशना है, तो अपने दिल के अलावा मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी ढूंढ सकते हो बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, कॉज इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

बस यही तो करते हैं हम यहाँ पर, एक याद आती है और हम साथ साथ पूरी की पूरी बारात निकाल देते हैं यादों की। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। पुरानी यादें, पुरानी बातें, पुराने फिल्में, पुराने गाने, और एक्चुअली पुराना कहाँ होता है, जब भी इनका जिक्र होता है, कोई बात होती है तो कोई ना कोई ऐसी याद है जो ताज़ा हो जाती है। जैसे कयामत से कयामत तक फिल्म के बारे में आपको सबसे पहले कैसे पता चला था, सबकी अपनी अलग अलग एक याद होगी, है ना। जो उस टाइम पे टीनेजर्स रहे होंगे या यंगस्टर्स रहे होंगे या रिलेशनशिप में होंगे, उनके लिए फिल्म अलग मायने रखती होगी। हो सकता है किसी ने अपने पार्टनर के साथ ही जाके फिल्म थिएटर में देखी हो, किसी ने फैमिली के साथ देखी हो, या मेरे जैसे कभी बाद में VCR पे वीडियो कैसेट में देखी हो। हो सकता है किसी ने आमिर खान को सबसे पहले रंग दे बसंती में देखा हो, फिर उसको पता चला हो कि कयामत से कयामत तक उसकी पहली फिल्म थी, या 3 Idiots में उनको पहले देखा हो और बाद में QSQT कयामत से कयामत तक के बारे में पता चला हो। सो पुरानी यादें पुरानी होती नहीं है, हमेशा नई रहती हैं हमारे दिल में। ये गाना सुन लेते हैं, ब्यूटीफुल सॉन्ग पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

आपको शायद पता हो या शायद ना भी पता हो कि लेट 80s में दूरदर्शन पे एक बहुत ही अमेजिंग सटायर शो आता था, द फ्लॉप शो बाय जसपाल भट्टी। जसपाल भट्टी उसके मेकर थे, उसमें वो एक्ट भी करते थे, क्या अमेजिंग थे वो। तो उसमें सोसाइटी, कल्चर, सिस्टम में जितने फ्लॉज है ना, उनको कॉमेडी के जरिए दिखाया जाता था। और हर एपिसोड के एंड में एक पैरोडी होती थी उसी टॉपिक से जुड़ी हुई। तो एक बार एक एपिसोड में उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉज दिखाए थे, जिसमें जसपाल भट्टी खुद एक PhD गाइड होते हैं, उनका एक स्टूडेंट होता है जो केमिस्ट्री में PhD कर रहा होता है। और उसके एंड में जो पैरोडी थी ना, वो होती है कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, बीकर को अगर जार कहो जार कहेंगे, करवाते नगर चोरी ये थीसिस तुम कहीं से, पूरी न होती डिग्री रह जाते ना कहीं के, हम डिग्रियों को आपकी सौगात कहेंगे, बीकर को अगर जार कहो जार कहेंगे। इसके एपिसोड्स, इसकी ये पैरोडी सब यूट्यूब पे अवेलेबल है। फिलहाल हम ये गाना सुनेंगे सफर फिल्म का, ओरिजिनल वाला मतलब पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची,
2: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
3: मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: कुछ दिन पहले ना मैं एक फिल्म देख रही थी, 50s की कोई फिल्म होगी, उसमें वाराणसी को काशी कहकर मेंशन किया गया। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और अचानक से मेरे कान खड़े हो गए क्योंकि पुराना नाम है ना, आजकल इतना इस्तेमाल नहीं होता है, हम वाराणसी या बनारस बोलते हैं। फिर मैंने काशी का मतलब गूगल किया तो मुझे पता चला कि ये संस्कृत के एक शब्द काश से बना है, जिसका मतलब होता है चमकदार या प्रकाशमय होना। तो काशी मतलब सिटी ऑफ लाइट्स। एक पुराना गाना भी था जिसमें काशी का मेंशन था, 1954 की नागिन फिल्म का गाना, काशी देखी मथुरा देखी, देखे तीर्थ सारे, कहीं नमन का मीत मिला तो आया तेरे द्वारे, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, ना मांगे ये सोना चांदी, मांगे दर्शन देवी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। ये गाना हेमंत कुमार जी और लता मंगेशकर जी ने गाया था, हेमंत दा का ही कॉम्पोजिशन था, राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था। खैर यहाँ पे हम एक और गाना सुनेंगे अब, जिसमें वाराणसी को बनारस कहा गया है। समझ गए ना आप कौन सा गाना है? सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। आहा।

ये क्लासिक गाना 1972 की फिल्म रामपुर का लक्ष्मण से। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये गाना पिक्चराइज्ड है रेखा एंड रणधीर कपूर पे। वैसे इस फिल्म में रेखा का नाम रेखा ही होता है और रणधीर कपूर का नाम लक्ष्मण, जो रामपुर के वासी होते हैं और गांव से शहर में आ जाते हैं और बड़े मजे होते हैं। फिर क्यूट सा इनका गेटअप जो है उसमें दिखाया गया है, धोती कुर्ता पहनते हैं, साथ में अपनी पोटली लिए फिरते हैं, लोटा लिए फिरते हैं और एक संदूक लिए फिरते हैं बक्सा, जिसपे लिखा रहता है नमस्ते जय राम जी की। वैसे आपको पता है रेखा ने एक बार एक इंटरव्यू में शेयर किया था कि रणधीर कपूर उनके फेवरेट को स्टार थे। उस दौरान उन्होंने काफी फिल्मों में साथ में काम किया था, अर्ली 70s से मिड 70s तक। चलिए फिलहाल 80s में आते हैं, 80s का ही ये ब्यूटीफुल क्लासिक गाना सुनते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

1972 की फिल्म जवानी दीवानी कादर खान साहब की एज डायलॉग राइटर पहली फिल्म थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तो फिल्म के डायरेक्टर नरेंद्र बेदी ने कादर खान साहब का लिखा एक प्ले देखा था और तब से वो उनकी राइटिंग के फैन हो गए थे। तो उन्होंने कादर खान साहब को अप्रोच किया फिल्म के डायलॉग लिखने के लिए। जवानी दीवानी से पहले भी एक फिल्म के लिए अप्रोच किया था, लेकिन तब कादर खान साहब ने मना कर दिया क्योंकि वो एज सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर अपने काम से काफी खुश थे और फिल्मों में नहीं जाना चाहते थे। लेकिन जब उनको बार बार ऑफर्स आने लग गए तब उन्होंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया और बेदी साहब की बात मान के जवानी दीवानी के डायलॉग्स लिख दिए। चलिए फिलहाल तो इस फिल्म का गाना सुनते हैं पुरानी जींस पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची के साथ
2: मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

एक बहुत ही अमेजिंग क्लासिकल सिंगर रही हैं, जिन्हें पद्मश्री पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, बेगम परवीन सुल्ताना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर गजल्स, ठुमरियां और कई गीत गाए हैं। फिल्मों में गाने बहुत ज्यादा नहीं गाए हैं, असमीज फिल्मों में गाए हैं, हिंदी फिल्मों में भी गाए हैं, जिनमें से ये गाना उफ इतना पसंद है मुझे। हालांकि इसका एक दूसरा वर्जन जो किशोर दा ने गाया है वो ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन इस गाने की जो गहराई है ना, मैं बयान नहीं कर सकती। इसके लिए परवीन सुल्ताना जी को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था उस साल। वैसे अवार्ड शायद उनके लिए इतने मायने नहीं रखते हैं, इस तरह के जो सिंगर्स होते हैं वो सिर्फ अपनी कला के लिए जीते हैं, वही उनका रिवॉर्ड होता है और वो उनकी गायकी से भी पता चलता है। तो कुदरत फिल्म का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग संग बाय बेगम परवीन सुल्ताना जी सुनते हैं। रिटन बाय मजरू साहब, कंपोज्ड बाय पंचमदा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारों, ओनली ऑन

आपको पता है जब सनी देओल की पहली फिल्म बेताब की शूटिंग हो रही थी तो उसपे क्या होता था? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तो फिल्म तो देखो फिल्म कैमरा से शूट होती थी, लेकिन उसी के साथ साथ वो जो एक होम वीडियो वाला कैमरा होता है ना, वो भी रखा जाता था ताकि शाम को सारा देओल परिवार बैठ के VCR पे वो रिकॉर्डिंग देखे कि जी हमारा पुत्र सनी देखो जी कितनी बढ़िया सुंदर एक्टिंग कर रहा है, सदके वारी जाए हम। या मे बी नो फीडबैक के लिए भी देखें कैसा कर रहा है, इससे बेटर कर सकता है। इसी बात पे बेताब फिल्म का गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @RJ.Charu, RJ.CHARU इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारों ओनली ऑन।

हम बॉलीवुड की अर्ली साईफाई मूवीज के बारे में सोचें तो जहन में मिस्टर इंडिया आती है 1987 की। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन आपको पता है 1964 में भी एक साईफाई रोमांटिक कॉमेडी टाइप की फिल्म बनी थी, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। इसमें किशोर कुमार थे। अब किशोर कुमार के पास उसमें क्या सुपर पावर होती है, आपने फिल्म देखी है तो आपको पता होगा। नहीं देखी तो मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहती, पर आप ये फिल्म देख सकते हैं, इंटरेस्टिंग। और इस फिल्म का एक गाना भी बहुत पॉपुलर है जो हम यहाँ पे सुन रहे हैं, रिटन बाय आनंद बख्शी, कंपोज्ड बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गाया है किशोर दा ने। एक्चुअली इस गाने को टूटे फूटे चोट खाए दिल वालों का एंथम डिक्लेयर किया जा सकता है। व्हाट अ सॉन्ग। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

कई बार कुछ मूवीज होती हैं जो इतनी खास नहीं होती हैं, लेकिन आपको याद रह जाती हैं कुछ इक्की दुक्की वजह से। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ऐसी एक फिल्म थी 1987 की, दिल तुझको दिया, जिसका इक्का कारण था उसका एक गाना जो हम सुनेंगे। एक जो दुक्का कारण था वो था अमरीश पुरी साहब का पॉजिटिव रोल। हालांकि इस फिल्म में पहले वो एक गैंगस्टर एक फाइटर होते हैं, लेकिन बाद में वो सुधर जाते हैं और हीरो होता है कुमार गौरव, उसकी हेल्प भी करते हैं। बहुत ही अडोरेबल सा उनका कैरेक्टर है, एंड उसमें जो उनका लुक है वो बाल्ड लुक है। आई थिंक ये पहली फिल्म है जिसके लिए अमरीश पुरी साहब ने अपना पूरा सर शेव किया था। आई थिंक किसी और फिल्म के लिए किया था, उसी दौरान इस फिल्म में काम कर रहे थे, ऐसा कुछ सीन था। तो अगर आप कभी ये फिल्म देखेंगे तो अमरीश पुरी साहब को तो जरूर याद रखेंगे। एंड कमिंग टू इस फिल्म का गाना, कंपोज्ड एंड रिटन बाय राजेश रोशन, संग बाय लता मंगेशकर। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

1965 की फिल्म खानदान का गाना लता जी का गाया हुआ, कंपोज किया है रवि साहब ने, लिखा है राजेंद्र कृष्ण जी ने। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म में बहुत अमेजिंग एक्टर्स हैं, नूतन जी, सुनील दत्त साहब, ओम प्रकाश जी, ललिता पवार जी, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग रोल जो अपना प्ले किया है वो है प्राण साहब ने। इनका नेगेटिव रोल है इसमें, वो ऐसे मतलब गुंडे नहीं बनते हैं कि जिनका अड्डा है वहां पे, बंदूकें बारूद है, उनके गुर्गे हैं, चमचे हैं, ये फैमिली ड्रामा है। तो इसमें ये फॉरेन रिटर्न भतीजे का रोल प्ले करते हैं जो घर में आके कलेश कर देता है खानदान में आके। अभी प्राण साहब एक तो इतने न्यूएंसेस अपनी तरफ से अपने किरदार में डालते थे ना, तो ये इनका जो किरदार है इसको ऐसा दिखाया गया है कि सर्कस के जोकर जैसे कपड़े पहनता है, उसकी ऐसी हिटलर जैसी छोटी सी मुच्छी है, उस पे वे अजीब अजीब से मुंह बनाते हैं प्राण साहब, और जिस तरह से बात करते हैं उन्होंने इस किरदार को इतना इंटरेस्टिंग बना दिया है ना कि मजा आ जाता है। तो वाह वाह। और फिलहाल यहाँ पे ये जो गाना आ गया ये भी वाह वाह है पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची,
2: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
3: मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

1971 की फिल्म महबूब की मेहंदी का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची। और इस फिल्म ने ना 1969 से राजेश खन्ना की हिट फिल्मों की जो मैराथन चल रही थी उस पे सॉर्ट ऑफ स्टॉप लगा दिया था। आराधना फिल्म जो उनकी ब्लॉकबस्टर हुई उसके बाद कुछ 17 फिल्में कंसेक्यूटिव हिट्स थी राजेश खन्ना की 1969, 70, 71 में। सो 1971 में ये महबूब की मेहंदी फिल्म इतनी नहीं चली और यहाँ से मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ गया। लेकिन ये जो गाना आ रहा है ये गर्मा गर्म तड़कता भड़कता सुपरहिट सॉन्ग पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

हाँ, बरसात की रात फिल्म की ये आइकॉनिक कव्वाली। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये कव्वाली तो अब धुरंधर फिल्म की भी पहचान बन चुकी है। वैसे आपको पता है ये एक और ओजी कव्वाली से इंस्पायर्ड है जो बहुत पहले की सूफी पोएट अमीर बख्श साबरी ने लिखी थी। न तो बुत कदे की तलब मुझे, न हरम के दर की तलाश है। ये नुसरत फतेह अली खान साहब ने भी परफॉर्म की थी, उससे पहले उनके फादर फतेह अली खान साहब और उनके अंकल मुबारक अली खान साहब ने भी परफॉर्म की थी। और बरसात की रात की कवाली

का जो सेकंड पार्ट है भाई, 12 मिनट की कवाली है। कुछ 5 मिनट हमने सुन लिए, अब बचे हुए 7 मिनट सुनेंगे। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्च।

0: यार अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। रणवीर सिंह ने बड़ी शांति और चुपके से दी मॉटल्स ऑफ मेलुहा के राइट्स खरीद लिए हैं। हां जी, मां कसम फिल्म्स उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम है जिसके अंडर ये काम किया गया है, एंड इट इज गोइंग टू बी अ ट्रिलॉजी जिसके राइट्स के लिए उन्होंने 40 करोड़ रुपए स्पेंड किए हैं, एंड द मूवी इज सेट टू गो ऑन द फ्लोर्स बाय 2028। बैट्स ऑफ बॉलीवुड में रॉकिंग स्पेशल अपीयरेंस के बाद गन मास्टर G9 के साथ ऑडियंस को गिफ्ट देने वाले हैं नन अदर देन इमरान हाशमी, जो इस एक्शन मसाला फिल्म में नजर आएंगे जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं आदित्य दत्त। और इस मूवी में उनके साथ जिनेलिया डिसूजा एंड अपार शक्ति खुराना जैसे एक्टर्स भी नजर आने वाले हैं। बाकी द मेकर्स ऑफ द फिल्म आर लुकिंग फॉर अक्टूबर 9th रिलीज। जैसे ही कन्फर्म होगा कुछ आपको जरूर बताऊंगी। फिलहाल एक कंफर्मेशन जो आ चुकी है उसकी बात कर लेते हैं। डायरेक्टर अनीस बाज़मी की अपकमिंग फिल्म जिसमें अक्षय कुमार लीड रोल निभाने वाले हैं अलोंग विद विद्या बालन, इस मूवी को उसका रिलीज डेट मिल चुका है एंड इट इज 4th of December। वैसे अभी तक इस मूवी का नाम डिसाइडेड नहीं है, बट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी एन आउट एंड आउट कॉमेडी ड्रामा। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
1: Sheesh. You know I came in for the cake. Looking the money ain't the only thing I chase down. She ain't see the stars in the race. So now she got in them.

0: Hot. Mirchi. It's hot.
1: O channati kuri, o channati kuri.

नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकां लई भंग होगी।

Mirchi. It's hot. It's hot.

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: कन्हैया लाल की।

0: Mirchi, it's hot.
1: Yeah.